0: ये दिल बना है शीशे का पत्थर पे इसको मत फेंको।
1: सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

एक बार एक भक्त शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाने के लिए जाता है और जैसे ही जल चढ़ाने लगता है उसकी नजर ऊपर लगे सोने के घंटे पर पड़ती है तो उस भक्त की नीयत बदल जाती है। वो सोचता है कि क्यों ना ये सोने का घंटा मुझे मिल जाए तो बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो वो शिवलिंग पर चढ़कर घंटा उतारने लगता है। भोले भंडारी उसकी भक्ति को देखकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि लोग तो फल और फूल मुझ पर चढ़ाते हैं, तुमने तो स्वयं को ही मुझ पर चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। तो भोलेनाथ उस भक्त को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। वो भक्त उस सोने के घंटे को ही मांग लेता है और भोलेनाथ खुशी खुशी उसे दे देते हैं। तो आइए भोले भंडारी का ये भजन सुनते हैं।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए, पेश है एक बैठक गाना हरिदत्त जय राम की आवाज में, सुनिए।
1: मनुष्य के जन्म पाए लाई मनुष्य रहा इंसान, एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर, इस जन्म में देख अब गधा बन के भोगे भैया हफीज।
2: अच्छा भैया जयराम, तब जब तू मरिए तब तू कौन की होगा?
1: देख भैया हफीज, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जाए, और जो मरब तैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt aan mij. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। मार्सन से श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा, शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा परनाना। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी थी। मार्सन से परिवार हरि प्रसाद धुन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा, शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा परनाना। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है अम्स्टर्डम में। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक ऐतवार्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैक 275 अम्स्टर्डम ओस डॉरप में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देंसडा खालफद्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैक 275 अम्स्टर्डम ओस डॉरप में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश के दुख में शामिल है।

क्या खूब आंखें है तेरी, क्या खूब आंखें है तेरी, जी लेंगे देख देख कर इनको। फिल्म काम चोर का गीत आप सुने किशोर कुमार और अलका याग्निक से उजाला रेडियो पर।

तुम क्या मिले जाने जा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। लता जी एंड उदित नारायण, फिल्म सातवां आसमान से आप सुने। अब एक बार फिर लता जी, इस बार मनमोहन सिंह के साथ, फिल्म वारिस का गीत।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति दो लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता शांति गयाधर का ससुर दो लड़कन के नाना दो पतों के ननवा ससुर तीन लड़कन के परनाना दो लड़कन के आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। अम्स्टरडम से परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति दो लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता श्रीमान शांति गयाधर का ससुर दो लड़कन के नाना दो पतों के ननवा ससुर तीन लड़कन के परनाना दो लड़कन के आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक। इतवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस दा खानस्तांद हल्फ द्री किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रीमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

0: रहा था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए, अलमेरा से परिवार गजाधर महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती चित्रा गयाधर महेश का पिता, श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, नीलन और शीरेन के नाना, संध्या और चांदनी के ननवा ससुर, जेलेन, निजेई और जिया के परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरिनाम सरमाका के पैदाइशी जो था। अलमेरा से परिवार गयाधर महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत बेटी श्रीमती चित्रा गयाधर महेश का पिता, दामाद श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, नीलन और शीरेन के नाना, संध्या और चांदनी के ननवा ससुर, जेलिन, निजेई और जिया के परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक। एथवर्ड सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिनसदखास्तांद हाल्फ 3 किए जाएंगे वेस्टखार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार और हरिप्रसाद दून महेश, स्वर्गीय लीन महेश, शर्मा महेश, हिल्डा महेश, अंद्रे महेश, स्वर्गीय शिव महेश, दियान महेश, मानी महेश, हेलोविन महेश, योहान महेश, शांति महेश और रुदि महेश के बड़ा भाई, सभी छोटकी के बड़कू और दो बहनोई के सार अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार और हरिप्रसाद दून महेश, स्वर्गीय लीन महेश, शर्मा महेश, हिल्दा महेश, आंद्रे महेश, स्वर्गीय शिव महेश, दियान महेश, मनी महेश, हेलोविन महेश, योहान महेश, शांति महेश और रुदि महेश के बड़ा भाई, सभी छोटकी के बड़कू और दो बहनोई के सार अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक ऐतफार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओकमेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देंस दखांस्तांद हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रिमेटोरियम ओकमेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार को सुनिए मार्सन से श्रीमान हरि प्रसाद दून महेश और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमान हरि प्रसाद दून महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश, शारदा महेश, इन लोगों के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सरमक्का के पैदाइशी जो था मार्सन से श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है अम्स्टर्डम में। और पैदाइशी सुरीनाम इलाका सरमक्का के जो थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन्स दखांस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्दे क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनेंगे अम्स्टरडम से परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद दो पतो के मामा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अम्स्टरडम से परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद दो पतो के ममवा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया ये आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देश दखांस्टांद ½ किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। नीवखेन से परिवार घेसे सेव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल की आयु में नेखनन फेफ्त ख्यार और माँ विधवा सुभद्रा सेव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घेसई के बेटा श्रीमती एरेन सेवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयकर रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना नीवखेन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घिसई की मृत्यु नीवखेन के सेंट एंटोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। बिरजू के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। नीवखेन से परिवार घिसई शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल के आयु में नेखनन फेफ्त ख्यार और माँ विधवा सुभद्रा सेव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसई के बेटा श्रीमती ईरवीन सेवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयक रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना नीवखेन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घिसई की मृत्यु नीवखेन के सेंट एंटोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। बिरजू के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले मंगलवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक दिन फन जीवन तोत अख्तूर Uitvaart Centrum Crematorium Daalwijk Moerdalij, Florida Drive nummer 7, Utrecht Overvecht me. Aur Arthi ke Dahkriya, aane wale budh ke subah 10:30 baje, woensdag aanstaande 10:30, kiye jayenge Daalwijk Crematorium, Florida Drive nummer 7, Utrecht Overvecht me. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्त फ्रजोरखिंग समस्त परिवार घिसई परिवार सेव गोविंद और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Een stagiaire van Chinese afkomst op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd met camera's. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdag. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste hebben gelukkig niet veel meer oponthoud dan zo'n 5 minuten. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier extra reistijd. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Het is druk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk een kwartier vertraging. En tenslotte staat er een auto met pech op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Aziz dosto. हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, यह आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये तो अखियां दे सामने नहीं रहना थे बीबा सरा दिल मोर दे दिस टाइम फॉर सच ए दन दन एंड इट इज अ सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना और गाना का नाम है बीबा यू होर्ट इट हियर सो बाय उजाला रेडियो वी गनीटे फ्रॉम एल्क मोमेंट एंड आई होप दैट जाय ओक एल्क मोमेंट आन इट गनीटे बेंट या देंक एरान यू कुंट अलेन टाइड वर्स्पिलन अस यू वर्गेट एरवान टू गनीटे डू यू दैट नीट दन वर्स्पिल यू ओक गेन टाइड. De stem van Yesser Desai hier zo aan de vocals. Gana kanam he hamto.

हर्षी को या ये तो लगता है कि तुम हो। भूपिंदर सिंह की आवाज में आप सुने एल्बम शबनम से, और ये है यू आर उजाला रेडियो।

0: आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी साहब को आप सुने फिल्म तीसरी मंजिल के गीत से। उजाला रेडियो का प्रोग्राम और
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: कलियों की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: डन।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टरडम से श्रीमती फ्रीड महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त अख्तियार औत श्रीमती फ्रीड महेश भैरव सिंह का पति आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। आम्स्टरडम से श्रीमती फ्रीड महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त अख्तियार औत श्रीमती फ्रीड महेश भैरव सिंह का पति आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्टखार्ड के मुर्दालय ओक मेरवैग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस द खानस्तांद हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्टखार्ड क्रेमाटोरियम ओक मेरवैग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार को सुनिए। मार्सन के रहने वाले श्रीमान हरि प्रसाद दोन महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद दोन महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा पर नाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। मार्सन से श्रीमान हरि प्रसाद दून महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद दोन महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा पर नाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक ऐतफर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिनसडाख आंस्टांद हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। बथुफदोरप से आंद्रे महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्त तख्त यार औत श्रीमान आंद्रे महेश का बड़ा भाई श्रीमती कारला महेश का बड़कू व्रीमी और जेमी के दादा दर्शना और अहिल्या के ददवा ससुर पांच लड़कन के आजा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सुरिनाम इलाका सरमाका के पैदाइशी जो था बथुफदोरप से परिवार आंद्रे महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल की आयु में श्रीमान आंद्रे महेश का बड़ा भाई श्रीमती कारला महेश का बड़कू व्रीमी और जेमी के दादा दर्शना और अहिल्या के ददवा ससुर और पांच लड़कन के आजा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है अम्स्टर्डम में। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज शनिचर के शाम में 5 बजे से 6 बजे तक और इतवार कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेर वैख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देश दखान स्थान हल्फ द्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रेमाटोरियम ओक मेर वैख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में।

0: से गाने।
1: और मृत्यु समाचार सुनिए अम्स्टर्डम से। मणि महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान मणि महेश का बड़ा भाई नौफा का बड़कू सिखमोंद का दादा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अम्स्टर्डम से मणि महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान मणि महेश का बड़ा भाई नौफा का बड़कू सिखमोंद का दादा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिन्स दखांस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रीमेटोरियम ook meer weg 275 Amsterdam Oostdorp में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुने।
1: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार, ये है यू आर उजाला रेडियो। कुछ मिले जुले संगीत के साथ एक बार फिर से हम हाजिर है, और इस बार है कुणाल गांजावाला की आवाज में ये सिलेक्शन, कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए सनम। हमारे सभी श्रोताओं को शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे।

कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए। सनम आपने भी सुने हैं कुनाल गांजावाला और साथियों की आवाज में। एक साउथ इंडियन सॉन्ग हम आपको सुनाने वाले हैं, कोंकणी लैंग्वेज है और इस बार सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। कलजा मतलब क्या है मुझसे मत पूछो।

सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब के आवाज़ में आप अभी यह सिलेक्शन सुने हैं। मिले जुले संगीत में लीजिए पेश खिदमत है फिल्म का नाम तेरे नाल लव हो गया। श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज़।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए तेरे बिन देर इंट नो डिजायर तेरे बिन माई वर्ल्ड ऑन फायर तेरे बिन आई कैन फ्लाई हाई हाई एंड हायर। लीजिए श्रेया घोषाल और कुणाल गांजा वाला की आवाज़।

Terebin, There Ain't No Desire. Terebin, My World's on Fire. Without You, My Dear. Kunal Ganja Wala Ki Awaaz. Film ka naam Bhagam Bhag. Aur station ka naam hai UR, Ujala Radio. Tu jaane hai to. बस आपकी खिदमत में स्टूडियो में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार लेकर कुछ मिले जुड़े संगीत कुछ मिक्स मक्स सॉन्ग्स और ऐसे में बिन तेरे क्या है जीना

सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है तेरी प्यास है, हर प्यास में दर्द है सनम, ये दर्द तेरा एहसास है।

जुड़े संगीत में उजाला रेडियो के जरिए लीजिए पेश खिदमत है उदित नारायण जी की आवाज। फिल्म का नाम कोई आपसा, सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में तुम हो ना।

सीने में दिल, दिल में धड़कन। हम आपको कुछ मिले जुले सिलेक्शन सुना रहे हैं, इसमें भी कुछ रोमानी नगमो हम आपको सुना रहे हैं। सीने में दिल, दिल

मुझ में तू, तू ही तू बसा, मुझ में तू, तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना। कुछ इस तरह से सिलेक्शन है, आइए मिलकर सुनते हैं मुझ में तू, तू ही तू बसा।

0: मुझ में तू, तू ही तू बसा। फिल्म का नाम स्पेशल 26।
1: उजाला रेडियो रेडियो तू जाने है तो
0: ओहो सिंहरिता
2: किन रे तू
0: सी सी
2: ब्याह था
0: ओहो

0: ना मैं समझा ना मैं जाना,
1: बिल्कुल नहीं।
0: जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों
1: फिल्म का नाम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

मजेदार सिलेक्शन आपके मध्य में प्रस्तुत की गई है उजाला रेडियो के जरिए। आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार लेकर कुछ मेरे जुड़े संगीत। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। हम आपको और भी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं, जैसे कि ये वाला, और फिल्म का नाम है उमराव जान। जिंदगी जब भी क्या करता है, आइए मिलकर सुनते हैं सिलेक्शन में।

जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। लीजिए द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, सोनू निगम जी की आवाज में, तुम पे ही मरता है ये दिल, फिल्म का नाम से यस टू लव।

हाँ जी, तुम पे ही मरता है ये दिल, तुम पे ही कुर्बान है ये दिल। सोनू निगम की आवाज आप अभी सुने हैं, फिल्म का नाम से यस टू लव। उजाला रेडियो का पैगाम है। वैसे रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं एम्स्टरडम में 020 409 08 07 पर।

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो.

तीरे पाप तीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे पाप तीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपनी दुम में बांधे अरे क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा।

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदना उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

रात को जी, हाय रात को जी, बोले पपी हरा भेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी।